0: लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
1: देखो

बेटे तेरा बाबू एक बढ़िया मानस था, सारा काम एकला देखा करता, उसके जाए पाछे सारी जिम्मेदारी तेरे पर आ गई, पढ़ाई लिखाई में ध्यान था, खेती बाड़ी पर ध्यान था।

सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: ड्रामा कटी है।
1: राजा ठीक

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे आपका मनपसंद और फेवरेट प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।
3: हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपका।
3: जी मेरा नाम अर्षद है, मैं गंगापुर बात कर रहा हूँ।
2: अर्षद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से।
3: जी गाना है अभी अभी आया है, कल परसों में ही खोखे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का इस वक्त।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम है जय किशन।
0: जय किशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर सिटी, जीआर गारमेंट।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी?
1: सर मूवी का नाम है हीरो नंबर वन और सॉन्ग है मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना
1: जी। सर थैंक यू।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।
0: नाम बताओ सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ग्राम तिलुखेड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
0: अच्छा अच्छा, बताएं कौन सा गाना सुनेंगे आज आप रेडियो डीएस से?
1: सर का नाम है बीबी हो तो ऐसी, और गाने की बोल है मेरे दूल्हे राजा आजा आजा जरा सामने आजा।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश पे।
2: 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: नमस्कार सर।
1: सर नमस्ते, आपका नाम बताएं।
0: बाबू खान।
1: बाबू जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी लखनऊ।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए।
1: बिल्कुल सुना
0: करे।

0: रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सर देव कुमार नाम है मेरा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: सर मैं जिला महेंद्रगढ़ नारनौल से बात कर रहा हूँ, गांव सहबाजपुर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर आपकी तरफ से कोई भी मेरी पसंद का गाना सुना दीजिए, आप भी पसंद का गाना चलेगा आज।
0: चलो ठीक है सर, सुना रहा हूँ मैं एक बेहतरीन सा आपकी फरमाइश का एक सॉन्ग।
1: ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।
0: ओके वेलकम सर।

0: हेलो हेलो जी, नाम बताएं।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे सर, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम राम खिलाड़ी, सलेमपुर से गाना सुनना है रोटी का।
0: रोटी
1: फिल्म का गोरे रंग पे इतना घुमाने कर।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश।
1: सुनो, और मेरे दोस्त और हैं।
0: नाम बताओ सर दोस्तों के।
1: अमृत बाबा कजौड़ा है,
0: और
1: खालू जी है, ये सब सुनना चाहते हैं गाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप लोगों को, सभी को ये प्यारा सा गीत।

0: सर, आपका शुभ नाम सर?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: विजय शर्मा सर, आपका शुभ नाम सर?
1: मैं ऋषि मीना बोल रहा हूँ सर, रेडियो डीएस से।
0: जी जी जी, ऋषि जी एक गाना सुनाइए सर, ये मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
0: जी जी जी सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो
5: हेलो
4: जी, नाम बताएं।
5: गुलशन।
4: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: गंगापुर सिटी।
4: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
5: आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पलटो पलटी।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश।

0: कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे।
1: आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए,
0: जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

0: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
0: मेरा नाम है महेंद्र कुमार जी, आर गारमेंट गंगापुर सिटी।
1: महेंद्र जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सासु जी ठारो लल्ला मचाए रास अल्लाह।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे। रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
4: गंगापुर सिटी के

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सबकेस मीना।
0: मीना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सुनापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कबीरा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कबीरा।
0: बिल्कुल। हेलो,
2: नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
2: मोहम्मद याफी।
0: मोहम्मद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: पाल से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सर पुराना गाना है, क्या तुम्हें पता है।
0: ए गुलशन सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मल्लिका।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: लाई भी न गई तन हाई भी न गई।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपके सुनवाई इसका ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: आरबी गुजर।
1: आरबी जी कहाँ से बात कर रहे हैं
0: आप? से
1: बताएं आरबी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: लुटपुट गया सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी शिकायत।

0: टूट गया।
1: हेलो,
2: नमस्ते सर जी।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
2: जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: जम्मू से केशव शर्मा जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: आज सर जी सुना दिए मुझे दिल खो गया, फिल्म का टाइटल सॉन्ग है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका। आपकी
2: तो सर आज बारिश बहुत हुई है जम्मू, सुबह से बहुत बारिश अभी भी हो रही है, तो आज मौसम बहुत ही सुहावना है
1: सर। हमारे गंगापुर सिटी क्षेत्र में भी भेज दो बारिश को, हमारे यहाँ बारिश की जरूरत।
2: अच्छा, नहीं आज बात चीज है, हमारे सुबह से बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है लेकिन सुबह काफी बारिश हुई है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है सर, जल्द हमारे गंगापुर सिटी में भी होने वाली है।
2: भगवान करे वहाँ भी बारिश करे जी, आपका भी मन खुश हो जाए जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलो सुना रहा हूँ आपका। आपकी
2: फरमाइश है।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: अमित पूजा।
1: अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: हम शोशनपुरा पिपलाई के पास गांव से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: दो कटोला।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: बंसी का जारेड़ा।
1: जारेड़ा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: बंगापुर रेलवे कॉलोनी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: गाना सुनेंगे, कौन सा गाना बता? पसंद होगा एफएम आई रेडियो भाई, कौन सा गाना? बेटा हेलो।
1: हाँ सर।
0: हाँ, ये कोई भी मम्मी डैडी के लिए कोई भी गाना होगा डेडिकेट कर देगा।
1: ओके सर, ओके।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: जसप्रीत सिंह हुड्डा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर? कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: पंजाब से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: जाइए सजना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ही बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: हेलो।
1: राधे राधे गुरु जी।
0: राधे राधे सर, राधे राधे। नाम बताएं आपका?
1: रोहित।
0: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आदर्श नगर।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: एक परदेसी मेरा दिल।
0: सुना रहे हैं सर आपको, आपकी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: वंशिका जारेरा।
2: वंशिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: रेलवे कॉलोनी।
2: बताएं वंशिका जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: उसकी आंखों का पहला कार्टून।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं वंशिका जी आपको आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: जी नाम बताएं आपका।
1: चेतन सैनी।
0: चेतन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जाट वड़ोदा गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: होपलेस।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी मॉर्निंग सर, नाम बताएं सहेगा ना।
1: मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम बताएं आपका।
1: सर मेरा नाम है अयूब सलमानी।
0: अयूब सलमानी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: पुलीगढ़ गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: हाँ सुनना चाहते हैं सर, फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो और गाने के बोल है जलते दिए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी

0: हेलो
1: जी भी है योगेश जानी।
0: योगेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कर रहा छत्तीसगढ़।
0: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मेघारे मेघारे ये सुनवा देंगे।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: कोमल।
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ओ राधा तेरी चुनरी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सचिन।
1: सचिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: बुम सागर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: मीना।
1: मीना जी कहाँ से बात कर रहे हो आप?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: क्या नाम है आपका?
1: मैं जी पिंड मौड़खुर्द जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू बोल रहा सर जी।
0: मट्टू जी कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक सर जी। तुसी सर जी प्रोग्राम च बहुत चिर हो गए जी आए नहीं जी। तुसी खैर सुखा जी घर दे विच ठीक ठाक है थोड़ी सेहत जी?
0: सब आशीर्वाद आपका, सब बढ़िया।
1: क्या बात है जी, साडे पंजाब दे विच शरद बारिश हो रही है जी।
0: अच्छा बरसात हो रही है पंजाब में?
1: हाँ जी।
0: क्या बात है सर, बहुत नसीब वाले हो जो अब ठंडा मौसम करवा दिया आप लोगों का।
1: तो सर जी अपने गंगापुर में जी बारिश आएगी जी?
0: अभी नहीं है सर गंगापुर में बारिश, एक ही बारिश हुई थी उसके बाद में नहीं है।
1: हम लोग भेजेंगे जी इधर कूल कूल हवा जी पूरी बढ़िया।
0: हाँ आपके वहाँ कूल हो गया, हमारे होट है। वैसे भी गंगापुर सर
1: से 1992 जी मेरे अज ब्याह थी जी, अज मेरी बरात चली थी अज।
0: अच्छा आपकी शादी अजमेर में?
1: हाँ जी आज के दिन हुई जी।
0: क्या बात है सर, बधाई हो आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।
1: धन्यवाद जी, थैंक यू जी, थोड़ा भी थैंक यू जी, धन्यवाद जी। बाबा नानक छोड़ चढ़दी कलाच रखी जी।
0: चलो हमारी भी मन की पूरी बात बता दो, अब हम भी कुछ पूछना चाहते हैं। बरात काई में गई थी आपकी उस समय?
1: सर जी दो जीपो गई तो माहौल खराब था जी, दो जीपो गई जी, एक कार गई थी जी।
0: अच्छा अच्छा कार गई थी।
1: हाँ जी सर जी ओ तो थोड़ा जा माहौल खराब थी जी।
0: अच्छा मट्टू जी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी?
1: नहीं जी ये तो जी जो हमारा बड़ा भाई जी उसने रिश्ता कराया थी जी, वो तो है जा कुछ किस्से सर जी।
0: अच्छा दुल्हन को देखी नहीं थी आपने पहले?
1: नहीं जी माता पिता ने देखी जी, हमारा भाई जी उसकी उसकी साली थी जी।
0: अच्छा बिल्कुल घर के घर में निमट लिए सब?
1: हाँ जी सर जी ये तो हूँ चल रहा जी, साढ़े वेले किस्से जी हो जाए कुछ।
0: आज शादी होती तो देख के करते बिना देखे कर लेते?
1: अज तो जी हूं तो जी बच्चे आपकी मर्जी वाली कराते कौन बोलता जी सू कौन बोलता।
0: चलो सुना बताओ कौन सा गाना सुनाना है सर आज?
1: तो सर जी एक बात और कहूँ जी, उदो जी सोने का रेट जी 5000 से 100 रुपया थी जी, 51,000 थी जी।
0: हाँ सर वो तो एक
1: 500 रुपया थी जी कुल 100 रुपये
0: का दौर था और उस समय पैसे की भी वैल्यू इतनी थी सर।
1: तो सर जी उसका जी थोड़े जे पैसे जी ब्याह हो जाता जी।
0: हाँ बिल्कुल।
1: चलो सर जी फिल्म है जी पुरानी मेला फिल्म है जी
0: जी,
1: ते मोहम्मद रफी साहब और भैन लता जी ने गाया जी
0: जी,
1: ये 1971 की फिल्म बनी है जी है
0: जी।
1: तो हम गुणगुना कर बताऊं जी?
0: हाँ बिल्कुल बताएं सर।
1: ठीक है जी। रुत है मेलन की साथी मेरे यार, ये गीत है सर जी।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:36 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: पूनम।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे मैम आप?
0: शरारत सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: रवि मीना।
0: रवि कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा प्रसूति।
0: बताएं रवि जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मासूम शर्मा का 1800 शूटर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: नाम बताएं सर।
1: सौरभ मीणा।
0: सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: करौली से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना है?
1: माधापुर से प्रधान।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मेरा नाम उमान सलमानी।
1: सलमानी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं गंगापुर सिटी चूली गेट से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा की मानो।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सर।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज सिमरन प्लीज।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: नाम मेरा पवन कुमार जोशी।
1: पवन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: कोड़ी पाड़ा से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जुम बराबर जुम सराबी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं जोशी जी, आपकी फरमाइश का गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: पायल जी बताएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
3: अंकित मीना।
4: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: हम बात कर रहे हैं उदयपुर से।
4: उदयपुर से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: तेरी मेरी प्रेम कहानी
4: सुनाओ सर।

0: हेलो सर जी नमस्कार
1: जी नमस्ते सर, मैं आपका
0: सर मैं रेलवे कॉलोनी से बोल रहा हूँ, बबलू मुन्नापुर सिटी।
1: क्या नाम है सर आपका?
0: बबलू नाम है सर जी, ड्रैकलिन, बबलू ड्रैकलिन।
1: अच्छा बबलू जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर एक वो थानेदार का गाना सुनना, जब तक ये शादी आंसू आ रहा हूँ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: नाम देव कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: मैं बैरोड से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मैडम जी, बरसात का मौसम है, ये गाना सुनिए।
1: गाने के बोल कुछ?
2: बरसात का मौसम है, ये जो है ना, मिथुन चक्रवर्ती में लंबा गाना है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडियो में कॉल करने।

0: हेलो सर।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कौन सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: सिंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पागल।
1: पागल ऐसे तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पिंकी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मऊ से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: शादी, एल्विस का है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: मेरा नाम है
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नशिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बुंदेवी फाइनेंसर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आशिक।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? सुन लो,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: किताब।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जी क्या नाम है आपका?
1: जी अंकित।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर रिको।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सर यूं ही कट जाएगा सफर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कूल किया, धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों। वक्त हो चुका है 1:02 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस
1: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
3: हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज आस्था बंसल स्टडिंग इन 9th क्लास बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point.

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:18 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू वेग गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:37 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कुल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: से चढ़ गए। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
5: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
6: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
7: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680।
8: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 3:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:04 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: दिलीप गुर्जर।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?

0: हेलो
1: सर नमस्ते
0: आदरणीय दीदी सर नमस्कार।
1: हाँ जी सर, का नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा चिट्टी माथा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी मौसम में नरमी है।
1: हाँ सर, यहाँ पर भी आज मौसम थोड़ा ठंडा है।
0: जी जी, फिल्म का नाम है गोलमाल 3।
1: सनी के बोल
0: जियो तो हर पल ऐसी जियो की आखिरी हो।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो टीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार
1: जी, वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, नमस्कार जी, बहन जी नमस्कार जी।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: रंग महल के 10 दरवाजे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका, बहुत बहुत।
0: यू वेलकम।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जितेंद्र मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: पल पल नहीं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो।

0: आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से। ठीक है,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं चली सॉन्ग।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो,
3: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम है राशिन वानिया।
3: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: मैं कर रहा हूँ बॉम्बे से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आप सुना दीजिए पहली पहली बार वाला।
3: पहली पहली बार
2: सिर्फ तुमका गाना है, पूरा गाना चलना चाहिए।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

तो वक्त हो चुका है 4:43 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरा वाला सरदार।
1: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम मनीष बेरवा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: जोधपुर सिटी से, नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ये माधुरी शर्मा का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैडम नाम शामू दास।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैम करौली से बात कर रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैडम यूपी से प्रधान।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: हेलो, हेलो,
4: नाम क्या है आपका?
3: हेलो,
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: सोशल ग्राम।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: दो कटोला।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मनजीत मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लाल परी।
0: ओके, तो सुना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गौरी।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: सपोटरा से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: कौन सा गाना? ट्रेंडेड में चल रहा हो कोई सा सुना दो।
4: ओके मैम।

0: तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक
1: रहे। हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: पायल गुजर।
1: कहाँ से बात कर रही?
2: मुजफ्फरपुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: चोट लगे उसे दर्द मुझे क्यों हो रहा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: आप
1: नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद खेल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ये तूने क्या किया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टिप देने जा रही हूँ। मैं हूँ आरजे खुशी। देखो, जब भी हम कोई चीज एक बार पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आती है। जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो और ज्यादा समझ में आती है। तीसरी बार पढ़ते हैं तो और भी ज्यादा समझ में आती है। और एग्जाम से हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बार पढ़ा और चले गए। इससे हमेशा हमें जितना आता है ना, उससे कम ही लिख कर आएंगे। इसलिए जरूरी है कि एक बार तो चाहे जैसे पढ़ लिया, लेकिन उसे दो तीन बार चार बार दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि बिना दोहराए कभी भी एग्जाम में ना जाए। और जब आप दोहरा के जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका एग्जाम पहले से बहुत बेहतर हुआ है। मैं हूँ आरजे खुशी, मिलूंगी कल आपको इसी पते पर इसी समय।

लाइफ में कई कई बार ना अमेजिंग सी चीजें हो जाती है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 रेडियो डीएस पर। अमेजिंग सी चीज हमारे साथ ही हर्मीज, एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड कंपनी है। कंपनी का नाम है हर्मीज और ओनर ने अडॉप्ट कर लिया अपने 51 साल के गार्डनर यानी अपने माली को। सारा फॉर्च्यून, 1,00,000 करोड़ का जो फॉर्च्यून था उसके नाम कर दिया। क्या बात है, अब इस चीज पे एक ही बात कह सकते हैं, इसी को तो कहते हैं सफर माली से मालिक तक का। फिलहाल आपके लिए कुछ अमेजिंग गाने बैक टू बैक 89.6 रेडियो डीएसपी।

गाड़ी चलाते चलाते कई बार क्या होता है कि हम टोल प्लाजा से गुजरते हैं, और टोल प्लाजा से गुजरते वक्त अगर ये हादसा हो जाए तो ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और गुजरात हाईवे में किसी ने भैया फेक टोल प्लाजा सेटअप किया, जहां पे डेढ़ साल तक 75,000 करोड़ रुपए उस टोल प्लाजा में भैया लोगों ने कमा लिया। क्या बात है, कई बार बिहार में रातों रात टोल प्लाजा गायब हो जाते हैं, कई बार रातों रात गुजरात में भैया टोल प्लाजा सेटअप करके 75 करोड़ रुपए ले जाते हैं लोग उठा के। एक चीज तो प्रूव हो गया, क्या इंडिया जो है वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं। पर फिलहाल आप कुछ अमेजिंग गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: मैच देखते वक्त या गाने सुनते वक्त मिलता है? अब गाने सुनते वक्त तो मिलता है, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स देखते वक्त 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। खैर फिलहाल भैया आज का शो यही तक था, फिलहाल टाइम टू गो। आपके लिए कुछ अमेजिंग गाने सुनाता हूँ मैं, बैक टू बैक अमेजिंग गाने रेडियो DS 89.6 पे।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका स्वागत है। 89.6 डीएस एफएम में मैं तनीषा आपके साथ। चलिए आपके दिन की शुरुआत एक कहानी के साथ करती हूँ। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच से थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझी नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी नहीं रुक रही थी, वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है, तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई न कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक कॉलेज में चार दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनकी दोस्ती काफी पक्की थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन यह बात ये चारों दोस्त भूल गए और एग्जाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों एग्जाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम ही खत्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़ों पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था इसीलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाएगा। आगे इस कहानी में क्या मोड़ आता है ये मैं आपको सुनाऊंगी 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा आपके साथ।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: मैं आपको सुना रही थी चार दोस्तों की कहानी, जिसमें वो सभी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और यही सोचने लगते हैं कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्जाम देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्जाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हो और उसको आपके झूठ के बारे में पता है तो आप सिर्फ उनकी नजरों में ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा,
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना भी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या, कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसो मत मेरी बात पे। चलो, आपके लिए मैं चार अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: நன்றி நமஸ்காரம்
1: अरे अरे अरे अरे भैया सांस तो ले लो, ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस और हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम गुनगुनाते कैसे हैं? अच्छा आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। आँख में कैसी, बस बस बस बस बस इतना काफी। अब फैक्ट ये है भैया कि गुनगुनाना तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी दोनों उंगलियां लेके अपने नाक को बंद करोगे, चलो करो करो करो, दोनों उंगलियां पकड़ो, नाक को बंद करो, मुंह से सांस लेना बंद करो और उसके बाद गुनगुनाने की कोशिश करो तो गुनगुना नहीं पाओगे। लो मैं करके सुनाता हूँ। बस बस बस भैया सांस तो ले लो, फिलहाल गाने सुनो। प्ले करता हूँ मैं आपके लिए बैक टू बैक चार गाने।
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: गंगापुर स्थिति की धड़कन रेडियो डियर्स।
1: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे, तो हाँ सुनो ध्यान से, पेश करता हूँ आपके खिदमत में अलविदा। अलविदा कह ही देते जाते वक्त, अलविदा कह ही देते जाते वक्त, कब तक एतबार करते रहे हम, और नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मत मनाओ गम भैया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, कहाँ, रेडियो डीएस 89.6 पे।
0: गंगापुर स्थिति की धड़कन रेडियो डीएस।